हामीले कोकेया दुजे बोले उजे दाले कु दे मिशन टिपिकल सु रेडियो माजेना नम्बर 1.7 अकोपानी जे दो डॉक्टर आनो म्यूजिकल मबिनो त दितालो एबी बेनाले कु बेल बोजु टुटे दिते ओडिटिस बेल बोजु सते आ बोनवा दि मेसी बोजे बुला लिया एबी बेला से कोसा इपाती